0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, mangalacateringservices.uk।
11: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
13: That's all.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
10: टैक्सी लाइसेंस,
9: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लेन, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 अरूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677
12: on 1413 AM.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
13: Naseema janibe batha gudarkun za ahwalam Muhammad ra khabarkun ببر این جان مشتاقم در آنجا فدای روزه خیر

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد

والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
7: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678
7: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

इंशाल्लाह तो झूम जाएंगे, जब झूमेंगे तो मोहब्बत से क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, ऐसे नहीं जरा मोहब्बत से क्या कहेंगे। सुन्नी वो नहीं जो सरकार का जिक्र सुने और सुन के सुन हो जाए, बल्कि मोहब्बत से कहे। शायर कहते हैं

है, गर्मी भी है, जैसे भी है सरकार का जिक्र सुनना है, सुनना है ना सरकार का जिक्र, सरकार के जिक्र से प्यार करना है। और जब क़यामत का दिन होगा, महशर का दिन बर्पा होगा, तो ये दीवाने क्या करेंगे। सुनिए शायर कहते हैं,

0: magnificent. Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95VR, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गांव स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: Ya Allah,
3: jo shakhs rozana 1000 martaba is isme mubarak ko padhega, inshaallah uske dil se tamam shak o shubah dur ho jayenge aur azm o yaqeen ki quwwat naseeb hogi. Jo la ilaaj mareez ba kasrat is isme mubarak ka wird rakhe aur iske baad shifa ki dua mange, usko shifae kamil naseeb hogi.
2: Ya rahman,
3: behad rehm karne wala, jo shakhs rozana har namaz ke baad 100 martaba is isme mubarak ko padhega, uske dil se inshaallah har qisam ki sakhti aur ghaflat dur ho jayegi aur iska hafza qawi ho jayega.
2: Ya rahim,
3: eh bada meherban, jo shakhs rozana har namaz ke baad 100 martaba is isme mubarak ko padhega, tamam dunyavi aafaton se inshaallah mehfooz rahega aur tamam makhlooq us par meherban ho jayegi.
2: Ya malik,
3: ae haqeeqi badshah, jo shakhs rozana subah ki namaz ke baad kasrat se is isme mubarak ko padhega, Allah taala use ghani farma denge.
2: Ya quddus,
3: eh buraiyon se paak zaat, jo shakhs is isme mubarak ka wird rozana 100 martaba karta rahega, use Allah taala tamam tafarruqat se nijat denge.
2: Ya salam,
3: eh be-ebzad, jo shakhs kasrat se is isme mubarak ko padhta rahega, inshaallah tamam aafaton se mehfooz rahega. Jo shakhs 160 martaba is isme mubarak ko padh kar bimar par dam karega, Allah taala use sehat o shifa ata farmayenge.
2: Ya mu'min,
3: ae amn o iman dene wale, jo shakhs kisi khauf ke waqt 631 martaba is isme mubarak ko padhega, inshaallah har tarah ke خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا.
2: یا مہیمن,
3: اے نگہبان, جو شخص غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور صدق دل سے 100 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کا ظاہر و باطن پاک فرما دیں گے, اور جو شخص 115 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہو.
2: یا عزیز,
3: اے سب پر غالب, جو شخص اس اسم مبارک کو نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ پڑھتا رہے وہ انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ ہو اور ذلت کے بعد عزت پائے.
2: یا جبار,
3: اے سب سے زبردست, جو شخص اس اسم مبارک کا ورد باقاعدگی سے کرتا رہے گا اسے کوئی اس کی مرضی کے خلاف किसी काम के लिए मजबूर नहीं कर सकता और ना उस शख्स को तशद्दुद सख्ती और दुश्वारी का सामना करना पड़े।
2: या मुतकब्बिर
3: ऐ बड़ाई और बुजुर्गी वाला, जो शख्स कसरत से इसमें मुबारक का विद रखेगा अल्लाह ताला उसे इज्जत और बड़ाई अता फरमाएंगे, और अगर हर काम की इब्तिदा में इसमें मुबारक को पढ़े तो इंशाल्लाह उसमें कामयाब होगा।
2: या खालिक
3: ऐ पैदा करने वाला, जो शख्स 7 रोज तक मुतवातिर 100 मर्तबा इसमें मुबारक को पढ़ेगा इंशाल्लाह तमाम आफतों से महफूज रहेगा। जो शख्स हमेशा इसमें मुबारक को पढ़ता रहे तो अल्लाह पाक एक फरिश्ता पैदा कर देते हैं जो उसकी तरफ से इबादत करता है और चेहरा मुनव्वर रहता है।
2: या बारी
3: ऐ जान डालने वाला, अगर बांझ औरत 7 रोज रोजे रखे और पानी से इफ्तार करने के बाद 21 मर्तबा इसमें मुबारक को पढ़े तो उसे इंशाल्लाह औलादे नरीना नसीब हो।
2: या मुसव्विर
3: ऐ मखलूकात की सूरत गरी करने वाला, अगर बे औलाद औरत इसमें मुबारक पर यूं अमल करे के 7 रोजे रखे और हर रोज इफ्तार के वक्त इन 3 नामों को यानी या खालिक या बारी या मुसव्विर 21 मर्तबा पढ़कर एक गिलास पानी पर दम करे और इस पानी से इफ्तार करे तो इंशाल्लाह उसे औलाद हासिल होगी।
2: या गफ्फार
3: ऐ दरगुजर और पर्दा पोशी करने वाला, इसमें मुबारक का बाकायदगी से विर्द करने से अल्लाह ताला की मग़फ़िरत हासिल होती है।
2: या क़हार
3: ऐ सबको अपने काबू में रखने वाला, जो शख्स दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो वो कसरत से इसमें मुबारक को पढ़े तो इंशाल्लाह दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से दूर हो जाएगी और खुदा की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ऐसा कुछ अता करने वाला, जो शख्स फिक्रो फाका में गिरफ्तार हो वो कसरत से इसमें मुबारक को पढ़ा करे या लिखकर अपने पास रखे या चाश्त की नमाज के आखिरी सजदे में 40 मर्तबा इसमें मुबारक को पढ़ा करे तो अल्लाह ताला फिक्रो फाका से उसको हैरत अंगेज तरीके पर निजात देंगे।
2: या
3: बहुत बड़ा रोजी देने वाला, जो शख्स इसमें मुबारक का विर्द करता रहे परवरदिगारे आलम उसकी किफालत अपने जिम्मे ले लेता है।
1: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio on 1430 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
0: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
10: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
11: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
13: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
12: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
13: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
13: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
13: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
13: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
14: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
15: You're listening to
16: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रैडफोर्ड 9627229627222।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: क्यों चमन में बेसदा मिसल रिम शबनम है तू, लब कुशा हो जा सरूदे बिरब्त आलम है तू।

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी सलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी-बड़ी छोड़ने की आदत है तो यह आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रैडफोर्ड एशियन
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: क्यों चमन में बेसदा मिसल रिम शबनम है तू, लब कुशा हो जा सरूदे बिरब्त आलम है तू।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: saferaider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.
11: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड 3।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट्स से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग services.uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: 1 Asian Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवीज।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The Real Asian Radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677. Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio, the real Asian radio. Bradford Asian Radio, our voice, your choice.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on
12: 01274 306677। हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। आते ही जी कॉल्स आपके लिए मैंने बहाल कर दी हैं। प्रोग्राम में शिरकत करें और हमारे प्रोग्राम की जान तो जाहिर बात है सुनने वाले होते हैं। जो ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी दिलचस्पी से दिलजमई से प्रोग्राम नेगेटिव मेरा सुनते हैं आप सबका बहुत शुक्रिया और हमारे पास एक और नंबर है जी व्हाट्सएप नंबर हमारा 07800-599-563 आप इसके ऊपर भी हमें कॉल कर सकते हैं बहुत आपकी कॉल्स का एहतराम किया जाएगा और स्टूडियो में जब आप स्टूडियो के नंबर 01274306677 पर नंबर आप कॉल मिलाते हैं आपकी कॉल को हमेशा इसका खैर मकदम किया जाता है अकॉर्डिंगली आपकी ख्वाहिश और डिजायर का जी ख्याल रखा जाता है बिल्कुल सामने इकराम सुबह 9 में ताज़ा ताज़ा खबरें हैं ब्यूटीफुल हमारे पास अकवाल जरिए हैं ब्यूटीफुल टॉपिक है टॉपिक ऐसा कि आप झूम उठेंगे वाओ हमेशा की तरह वेरी सिलेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव आप कहेंगे वाओ तबीयत हशाश बशाश हो गई क्यों ना हो गई मौसम की रंगीनियां मौसम की ताजगियां मौसम का साथ हमारे साथ हो तबीयत खिली खिली निखरी निखली निखरी निखरी उजली उजली रखती है और सुबह नौ का मकसद भी यही होता है कि आपकी तबीयत को खुश रखना आबाद रखना और बहुत सी ढेरों ढेर दुआएं भी होती हैं सामने क्राम मशक्कत आमेज काम में मुशक्कत खेज कह लें हम मुशक्कत से भरपूर काम है जी जहां भी हर काम को मेहनत लगती है हर काम हर हुनरकारी में हमारी मेहनत और फिर ये कहें कि मेंटली इतनी स्ट्रेस समटाइम्स होती है दिल चाहता है कि कोई बड़ा वो कहता है कहते हैं ना कि तफरीह तबा से भरपूर कुछ खुशगवार म्यूजिक सा हो जिसकी शुरुआत जिससे की जाए अपने काम की और ताकि थकावट फील ना हो किसी भी शुभाय जिंदगी में ताल्लुक हो सकता है इन अफराद का हमारे पास जो इस वक्त मैंने कहा पहले आपकी तबीयत जो है वो बहाल की जाए क्योंकि जो मौसीकी के शौकीन जिसे कह लें जिनको जी बड़े दिलचस्प सॉन्ग्स वो कहते हैं कि भई हमें रूखे फीके सॉन्ग्स बिल्कुल नहीं सुनाना हमारा मूड ऑफ हो जाता है मैंने सोचा जी ठीक है आप के लिए प्रोग्राम है फिर आप ही की नजर हम एक ब्यूटीफुल सॉन्ग करते हैं और उसके बाद जो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला है टॉपिक बेस आपको थोड़ा सा सस्पेंस और सरप्राइज तो मैं रखती होती हूँ हमेशा की तरह धीरे धीरे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें धीरे धीरे आपकी इच्छा और मन की तमन्ना जो है हम अच्छी तरह पूरी करेंगे क्योंकि आप जो है मौसीकी के दिलदादा हैं म्यूजिक के और जो मुझे फीडबैक मिलती है कि प्लीज आपने खुश्क म्यूजिक जो है हमारी किस्मत में नहीं लिख देना तो मैंने सोचा भाई आज का हर एक जो सॉन्ग है आपकी तफरीह तबा को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन और खूबसूरत सा हो हमारी जो मौसीकी की दुनिया में मैंने पहले भी अर्ज किया था कि फनकार जो होते हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे जो होते हैं दाद पाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे इनके फैंस होते हैं और किसी एक जगह मखसूस जगह इलाके से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता ये एक मखसूस जगह से ताल्लुक रखने के बावजूद पूरी दुनिया पे इनकी आवाज जब छाई होती है अब मैं बात को मजीद उधर उधर तो नहीं लेके जाऊंगी कि जी इस वक्त वैसे पूरी दुनिया मेरी भी आवाज सुन रही है आप बात समझ गए होंगे बस यही होता है कि वो कहते हैं सियाने कहते हैं अकलमंद के लिए इशारा ही काफी होता है बिल्कुल बड़े बड़े अकलमंद हजरात खवातीन हजरात मेरा प्रोग्राम बड़े शौक से सुन रहे हैं थैंक यू जी दूर क्यों जाना है जी हमारी आशा भोसले जो है बैन अल अक्वामी सतह पर एक नाम माना जाता है और इनकी ये लिरिक्स जो है वाओ, विद वीडियो तो इसकी क्या ही बात होगी। आपको ये एक गजल है जी, और गजल के शौकीन और दिलदादा जो लोग हैं यकीनन इसे पसंद फरमाएंगे। चलिए देर किस बात की है, वज़ीर सामईन इकराम आपकी नजर आशा भोसले की ये खूबसूरत सी गजल करते हैं, रोमांटिक गजल इसे लिखा गया है जी। आइए रोमांटिक सी गजल जो है ताकि मूड बहाल रहे, क्या ख्याल है आपका, चलिए सुनते हैं जी।

0: प्रोग्राम सुनने वाले हों तो कैसे ना फिर आयशा अख्तर भी जो है अपने एक गौहर दिखाए और अपने जौहर दिखाए और क्या क्या मैं अब कहूं। खैर, बड़ा अच्छा लगता है जी आपके साथ प्रोग्राम करने में। हमारे मजे सामईन इकराम इतना दिलचस्प नजरियात के हामिल होते हैं। मुझे फीडबैक जब मिलती है तो मैं कहती हूँ सबसे पहले हमेशा की तरह हमारी रेडियो टीम जो हमें, मैं कहती हूँ, सारांकों पे बिठाते हैं पहले वो सारांकों पे कि जिनकी मेहनतें काविशें जो है उनकी वजह से ये सिस्टम जो है ऑनेस्टली आप देखें कि इसको बरकरार रखना, पेश करना बैन अलकवामी सतह पे, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल व करम के दिन दुगनी रात चौगनी जो अल्लाह ताला तरक्की दे रहा है हमारे रेडियो को, अल्लाह ताला इससे भी बढ़कर इंशाल्लाह इन फ्यूचर इस हमारे रेडियो को तरक्कियां दे, कामयाबियां दे, कामरानियां दे। क्यों ना हो कि जो हमें भरपूर तरीके से प्रोग्राम करने की इजाजत देते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमारी फीडबैक बनते हैं, और फीडबैक सबसे पहले यही बनते हैं, और फिर हमेशा की तरह हमारे मजे सामईन इकराम के इतना खूबसूरत और इतना दिलचस्पी से प्रोग्राम सुनते हैं। मेरी नजर अचानक उठी है घड़ी की तरफ और वो कह रही है आयशा अख्तर स्लो डाउन हो जाओ, वरना अब जो सॉन्ग लगाओगी तो क्या फायदा, बीच में रह जाएगा। इसलिए क्या ख्याल है कि एक ऐसे अभी टाइम है तो टाइम वेस्ट किए बगैर एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं जी, फिर आपसे मुलाकात होती है जी। सुनिए बेहतरीन म्यूजिक सॉन्ग आपके लिए।
1: के पहला प्यार हुंदा फिर व्या,
2: ओ तू किदे नाल प्यार करना,
1: थोड़े नाल, अगले जन्म च की पता केड़ा पशु जानवर बन जाना।
2: ये ता है, उन्हां च व्या नहीं हुंदा, उन्हां च कल्ला प्यार हुंदा।
3: जानवर किसे थां दे

0: जी समय निक्राम चले। अब मैं सोच रही थी कि जी थोड़ा सा लॉन्ग है ये सॉन्ग, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल सा और बहुत ही जल्दी हो गया गाना, ब्यूटीफुल था। लेकिन चले खैर, ब्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर हमारी एक ब्रेक भी हमारा इंतजार कर रही है। हमारी वेबसाइट brefrationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। सॉन्ग्स आपके लिए बहुत जबरदस्त तैयार करके रखे हैं जी, योर फेवरेट। यू विल एंजॉय दिस म्यूजिक टुडे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह तो कहना होता है ना, अच्छी बात है। एनीवे, मैं देख रही हूं कि छोटा सा कुछ लिरिक्स जो है आपकी खिदमत में पेश कर दूं, तो चलिए। नहीं भाई, अभी 1 मिनट रह गया है ये ब्रेक का जो टाइम होता है ना, हमें बड़ी एहतियात से देखना पड़ता है, क्योंकि भाई आप लोगों की कमर्शियल्स, आप लोगों की जो एड्स हैं वो चल रही होती हैं, तो उनको प्रमोट करना हमारा अवलीन फर्ज है भाई, तो फर्ज के ऊपर फिर नजर होती है। इसके अलावा हमारा नंबर जो है 07800-599-563, इसके ऊपर आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं जी। अब क्या कहूं कि मैं खुद भी कल जो प्रोग्राम था महबूब इलाही साहब का भी, तो अक्सर मेरा प्रोग्राम जो होता है ज्यादातर मैं चलते फिरते कहीं किचन में हूं, कोई काम कर रही हूं कोने कुदरे में, लेकिन ये होता है कि हमारा ऐप जो है, अगर आप डाउनलोड कर लें, इसकी बहुत सहूलत है। और गाड़ी में भी आप DAB पर, डैप पर हमारा प्रोग्राम जो है बहुत ही खूबसूरती से सुनते सुनते सुहाना सुहाना सफर जो है वो तय कर लेते हैं। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक।
1: एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk, दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: एंड द विनर इज
3: योर बिजनेस बीइंग हर्ड ऑन द रेडियो।
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीड्स रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 और 16 अगस्त को एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहा रोड ब्रैडफोर्ड में, जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे। फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ, एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए। सैटरडे एंड संडे 15th and 16th of August 2026 लीड्स रोड फेस्टिवल।
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर ऑफ दिस ईयर्स ब्रैडफोर्ड मेला।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार।
10: पर जो दुल्हन करे सिंगार
11: आज ही मामू काकी की दुकान
10: खालिस सोने की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
11: आपकी शान
10: हमारी आन
11: क्वालिटी की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड PD95ER 01274491442
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
1: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
13: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
14: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
15: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
14: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं
3: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

ऑपरेशन रेडी 10 बजे से 1 बजे तक होगा, तो वो वैसे ये अब उसकी बात है कि जब हम कहते हैं ना 10 से 1 बजे तक, तो थोड़ा सा अरे घबराने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका सफर रखेंगे। जब जहाज जो है प्लेन एरोप्लेन चला जाता है 22 feet 22,000 फीट की बुलंदी पे जब जाता है तो एयर होस्टेस जो है वो अनाउंसमेंट करती है, मेरा ख्याल है इतना ही फिगर कमोबेश होगा, चले कुछ कमी बेशी होगी तो आप खुद उसको अकाउंटिंग को जो है ना सही काउंट कर लीजिएगा, अकाउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कमोबेश जब इतनी बुलंदी पे जहाज आता तो एयर होस्टेस जो है, जब खवातीन हजरात इस वक्त हम 22,000 फीट की बुलंदी पर सफर कर रहे हैं, तो जो बड़े नाजुक दिल होते कहते हैं बयान करना कोई जरूरी सी वो बताना जरूरी था, चुप रहती हम चुप करके बैठे हैं, डराती क्यों तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, बिल्कुल भी ये डराने वाली ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी बात नहीं है। आपका सफर इतना अच्छा रहेगा, इतना खूबसूरत कि आप खुद कहेंगे वाओ अमेजिंग एंटरटेनमेंट, होपफुली इंशाल्लाह। तो हमारी वेबसाइट जो है वो bradfordnationradio.co.uk है, उसे भरपूर इस्तेफादा हासिल करें, और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी हमारे, और जो आप व्हाट्सएप के ऊपर हमें जो है हमारे मोबाइल के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो है 07800599563। बहुत कुछ अब याद आ रहा है, धीरे धीरे डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि सॉन्ग जो है एक इस यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये रोमांटिक सॉन्ग 2026 का है, ब्यूटीफुल है जी, पंजाबी सॉन्ग है, तो मैं क्या थोड़ा सा हट के हमेशा ही तरह आयशा का मकसद होता कि हट के धमाकेदार एक म्यूजिक पेश करूं कि आपकी जो तफरीह है, आपके जो काम है, वो कह रहे भाई हम फैक्ट्री में मजदूर तबके के लिए आप जिक्र करें, भाई फैक्ट्रीज जितनी भी है जहां जहां मजदूर तबका, वो कहते हैं हम मेहनत कश है, भाई हम क्यों नहीं, भाई आपकी मेहनत को हम सलाम करते हैं अलकासिबू हबीबुल्ला, बिल्कुल जी मेहनत करने वाला अल्लाह का भी दोस्त है। और ये जरा तज़किरा बहुत बहुत खूबसूरत सी बातें आप सबके लिए, हमारे सब सुनने वालों के लिए, हमारे सब लिसनर्स के लिए, और स्पेशली जो इतनी मुशक्कत कर रही है, हमें फीडबैक और कॉल्स आ रही है उसका भी जिक्र करते हैं। इससे पहले हमारा टॉपिक अब और क्या, मैंने सस्पेंस रखना बहुत खूबसूरत आप सबके लिए, मेरे लिए, सब सुनने वालों के लिए, वर्ल्ड वाइड जहां मेरी आवाज जा रही, इंसान की तखलीक का मकसद क्या है। अभी मुझे शेर का जी जवाब मिल चुका है जी, एक हमारे रेगुलर कॉलर जो मैनचेस्टर से चौधरी रुखसार अहमद साहब, उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन मैं फिर उसको अभी सीगाए राज में रखती हूं, उसको डिस्क्लोज नहीं करना, और भी कॉल्स लेनी है। इतना ब्यूटीफुल सा शेर, आप कहेंगे लो जी हमें तो वो भूल भी गया, तो भूलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी चले वो किधर गया है, मेरे पास भी इधर था, तो अभी बातों बातों में जी आ गया है मेरे सामने ये शेर है, तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे ना कयामत शबे तन्हाई की। बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में जिनको आता है उनके लिए तो बहुत इजी है, जिनको नहीं आता वो तलाश सर्च जरा करें, और हर एक जवाब जो है बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, बहुत खूबसूरत है टॉपिक हमारा, क्या मकसद है इंसान की तखलीक का, हमारा मकसद हयात क्या है, क्या है भाई हमारा मकसद, क्यों दुनिया में आए हैं, ठीक है। इसके बारे में बातचीत भी रहेगी, आप भी हमें फीडबैक दें, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो।

जी बिल्कुल मजे। सामईन इकराम, ब्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर आशा अख्तर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक सुबह नौ में लेके आई है। म्यूजिक भी आप लोगों का फेवरेट जो है चल रहा है, और इस वक्त मेरे पास जो फरमाइश भेजी गई है, वाओ अमेजिंग, आप खुद सुनेंगे, आप कहेंगे जरा हट के है ये। जी बिल्कुल, ए बड़ा बहुत जरा हट के ते बड़ा दिल छू लेने वाला। जी ताड़ी नजर हुने कर दे, बहुत ही खूबसूरत जिया चंगा जिया उन्हें ज्यादा पंजाबी दे लफ्ज जी बोले थे, फिर और तुसी कहोगे टू मच हो गया। इसलिए फिर वापस बैक टू स्क्वायर हम अभी उर्दू पे फिर आ जाते हैं। जी बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपका इंतजार कर रहा है जी, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अपने जहन को हाजिर नाजर उतनी देर में कर ले और सोचे, हम सब सोचे हमारा जिंदगी में आने का मकसद। अगर इतनी बात जरूर कह देती हूँ इससे पहले, हमारी वेबसाइट bradfordhmradio.co.uk है जी, और हमारा स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी, और हमारी मोबाइल नंबर 07800599563 है जी। आप कहेंगे कि मैंने कहा कि आप कहेंगे कि हाँ जी, मैं आप पे ये वाजे कर दूं कि चूंकि ये एंटरटेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, अगर हम इसको मजहबी लिहाज से देखें, वैसे तो देखिए हम मजहब और डेली रूटीन लाइफ को दूर एक दूसरे से जुड़ा नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन फिर वो जो बहुत हमारा डीप और बहुत ही एक इमोशनल जो होता है और बहुत ही खूबसूरत सा होता है, एक हमारे बिल्कुल टोटली जिसे हम कहते हैं कि अगर हम दुनियादारी से भी उसको थोड़ा सा एक साइड पे रखें कि एक दुनिया क्या करें, कि भाई हम क्या करें, लोगों ने बना दिया ये टर्म कि दुनियादारी है और दीन है, खैर तो वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो तो बहुत ज्यादा हमारे पास इस्लामी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, वो भी इंशाल्लाह साथ चलें करेंगे उसमें गुफ्तगू के दौरान, बल्कि वही चलें अब करते हैं, और साथ साथ दुनियादारी के साथ चलते हुए क्या मकसद है हमारा। आपके पास बहुत नॉलेज होगा, मुझे बड़ी खुशी होती है इतने महज़ब मुअद्दब बाज़ौक और अहले इलम लोगों के दरमियान प्रोग्राम करते हुए कि दुनिया के खित्ते से कहां कहां से और पाकिस्तान से मुझे जो कॉल्स आती हैं और उनकी फीडबैक आती है, मैं आप सबको बहुत ज्यादा इसकी आप सबकी ममनून मशकूर और शुक्रिया आप सबका अदा करती हूँ। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बिकॉज आप खुद एक बहुत दानिशमंद हैं, आपके अंदर ये सारा नॉलेज है, वो अट्रैक्ट करता है आपको, और फिर वो हम गिव एंड टेक पॉलिसी भी कर लेते हैं। क्या ख्याल है आपका, क्या ऐसे चलें तो क्या बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा बेहतर होगा। मेरे पास एक फरमाइश बहुत ही खूबसूरत है, मैं चाहती हूँ कि अगली नेक्स्ट ब्रेक पर जाने से पहले ये थोड़ा सा हम फरमाइशी सॉन्ग सुन लें। एक तो जिन्होंने फरमाइश किया ऑब्वियसली उनकी भी ये दिली तमन्ना होगी कि जी वो सॉन्ग आए और वो मेहनत करते हुए अपना जो मेहनत में दिल लगा के काम कर रहे हैं तो उनको अच्छा लगे, तो हम सबको अच्छा लगना चाहिए। आइए ये फरमाइश जो है पूरी करते हैं और एक खूबसूरत सा सॉन्ग आपकी नजर करते हैं।

0: क्या बात है जी, क्या बात है। मैं कहती हूं कि वाकई दाद देने को दिल करता है। फरमाइश करने वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी, और जिसने ये सॉन्ग गाया है उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। म्यूजिक अगर ऐसा हो तो वाकई मैं कहती हूं प्रोग्राम को तो चार चांद लगने ही लगने, और हमारी ऑडियंस इतनी खूबसूरत चॉइस की हामिल हो तो वही हम उनको दाद देते हैं। हमारे प्रोग्राम की क्या दाद देंगे, हम तो आपको दाद देते हैं कि आपकी वजह से हमने इतना खूबसूरत सॉन्ग सुना। वाकई वाकई बेहतरीन म्यूजिक जी, बहुत बेहतरीन। क्या करें, कैसे करें कि गली जो है ना हमारी, वो हमें याद कराती है कि चलते हैं हम ब्रेक पर। अभी तो चलने से पहले ये एक जी हमें अभी फीडबैक जी हमें ज्वाइन किया हुआ है इस वक्त जी, ये मैं देखती हूँ जी इनका क्या आया है। ब्यूटीफुल सॉन्ग हमें पाकिस्तान से श्याम जी ने ज्वाइन किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच श्याम जी, आपको मोस्ट वेलकम हमारे प्रोग्राम में। ये खुद इनके प्रोग्राम्स इतने लाजवाब, इतने बेहतरीन के ये वंडरफुल जिसे कहते हैं ना, एक प्रेजेंटर है हमारे पाकिस्तान में श्याम जी। और ब्यूटीफुल सॉन्ग जी, बहुत शुक्रिया। नैना दा की करा, क्या बात है, लव दिस सॉन्ग। आप क्या, मेरे ख्याल में सबने पसंद किया है। आई लव दिस सॉन्ग एज वेल, आई रियली रियली एंजॉयड दिस सॉन्ग, आई रियली लव दिस सॉन्ग, ब्यूटीफुल एवर जी। और सॉन्ग अच्छा जी शामिल होता है वो जी, कह रहे हैं कि जी मेरे हर शो में ये प्रोग्राम, ये हमारे पास से चूंकि व्हाट्सएप का ये जो है नंबर है जी, तो वो हमें पाकिस्तान से इनके जो कमेंट्स हैं, इनके जो फीडबैक है वो बैन अलावामी सतह पर मिलती है जी, और बेहतरीन। और आप सबका जहां जहां दुनिया भर में हमें जिस जिसने ज्वाइन किया हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, और आपका प्रोग्राम को सराहने का शुक्रिया। बल्कि देखिए आप इतनी खूबसूरत हमें भेज रहे हैं चॉइस और फरमाइश, तो इसकी वजह से सबको ये प्रोग्राम जो है सुनने को मिल रहा है। और वंस अगेन आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और हमारी घड़ी जो हमें लेके जा रही है ब्रेक की तरफ, तो आफ्टर द ब्रेक इससे भी बेहतरीन बेहतरीन, नहीं हर सॉन्ग की अपनी एक होती है, क्या कहते हैं उसका यूनिकपन होता है, हर सॉन्ग यूनिक होता है। लेकिन और भी चलेंगे, ऐसे कह लेते हैं, और भी बहुत से खूबसूरत हमारे पास म्यूजिक नगमात है। और हमारे पास जो हमारे टॉपिक का हम शुरुआत करेंगे, यू विल like that as well. Challenge
1: Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
10: Pune Dubai
7: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
1: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
1: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज।
1: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
4: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
1: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADN। बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78।
10: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज। पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA। फोन 01274 306 567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
7: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
7: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
7: 07548 419 678।
1: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
11: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306 677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306 677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
0: वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ये हमारा भी जो रेडियो का चैनल, अल्हम्दुलिल्लाह, ये रेडियो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM। वाओ जी, हमने भी बड़े बड़े हवाए रोज आप लोग जैसे सराहते हैं और खुद इतने नॉलेजेबल पर्सनालिटीज जो हैं वो सुन रही हैं प्रोग्राम, तो वाकई प्रोग्राम को करने का दिल करता है। और मुझे कॉल मौसूल हुई है जी हमारे स्टूडियो टेलीफोन नंबर पर पाकिस्तान से, तो वो जाहिर बात है कि उनका फिर ये खर्चा भी आता है जो कि हम सेव करना चाहते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है जो उसके ऊपर आप हमें कॉल करके 07800 599 563 पर भी आप हमें ज्वाइन करके जो है वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग के जो एक दूसरे से इल्मी जो होती है गुफ्तगू, मेरा खुद का भी अगर व्हाट्सएप का नंबर हो तो मैं ऐसे डिसेंट और बावकार लोगों को देना पसंद करती हूँ नंबर के, जो वाकई जो है इल्म की जो जितनी भी बातें होती हैं इल्मी अदबी और इल्मी अदबी ही हम कहें तो बहुत बेहतरीन वर्डिंग होगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी फीडबैक. बहुत शुक्रिया श्याम जी, आपने हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया हुआ है और हमारे जो रेगुलर कॉलर फ्रॉम मैनचेस्टर रुखसार अहमद साहब और जी अब क्या जी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मुझे कॉल्स आ रही हैं, फीडबैक आ रहा है कि जी आपके आपका सॉन्ग जो है उसने तो तहलका मचा दिया है. हम शुक्रगुजार क्या, हम शुक्रिया अदा करते हैं चौधरी रुखसार अहमद साहब का कि इतना खूबसूरत ब्यूटीफुल सॉन्ग जो है वो सबको पसंद आया. और इसी तरह से होता है कि आप हमें चॉइस अच्छी भेजते तो सबको जो है वो पसंद आ जाती है और फिर इस तरह से सिलसिला जो है छाई का कह लें, खूबसूरत गुफ्तगू का कह लें, खूबसूरत म्यूजिक का, तो वो चलता रहता है. जी बिल्कुल सामईन इकराम, हमारा टॉपिक जो है मैं उसको भी साथ ले के चलती हूँ. बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के इंसान की हमें दुनिया में जो है हमारा आने का मकसद क्या है. चले मैं ये जो है हमारे कुरान पाक की जो वर्सेस है, मैं ये जो है सूरह मुल्क जो है 29वें पारे में है हमारे, तो मैं उसकी जो पहली आयत मुबारका है कि तबारक अल्लज़ी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. फिर सब कहते हैं कि जी आप मजहब को दुनिया से बिल्कुल जुदा कर देती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं. चलो मैं क्योंकि बेहतरीन रहनुमाई जो हमारे पास है तो वो कुरान ही है, बेहतरीन है, वही है हमारा सब कुछ, तो उसी से गाइडेंस लेके फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे. जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. पाक है वो जात जिसके कब्जाए कब्जा में सल्तनत है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है, जिसने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुमने से कौन अच्छे अमल करने वाला है. ठीक है जी, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم کبھی معنی و مفہوم کے میں پناہ مانگتی ہوں شیطان سے, شیطان مردود سے, اللہ کی. دیکھیں اب جب ایک ہم خوبصورت حوالہ لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ مکمل اور کمپلیٹ ہونا چاہیے. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان انتہائی رحم والا. میں چونکہ یہ جو ہے ہم سب اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ مذہب اور دنیا کو ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے کہ جی ہم اس وقت میوزک کی دنیا میں گھسے ہوئے ہیں, انٹرٹیننگ کر رہے ہیں. نہیں, جب سیریس ہونے کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم سیریس ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جو ہمیں بالکل ایک ریدم میں رکھتا ہے, ایک تناسب میں رکھتا ہے. ہم جو ہے وہ چاہے انٹرٹیننگ کر رہے ہیں تو ہم نے حدود نہیں پھلانگنی. ہم دنیا کے کہیں بھی کسی کونے میں چلے جائیں, ہم اگر ان ورسز سے جو ہے قرآن پاک کی ان سے اگر ہم استفادہ حاصل کریں تو ہم ہر جگہ کے اوپر دیکھیں گے کہ کامیاب ترین انسان ہے. مقصد کیا ہے ہمارا؟ کامیابی حاصل کرنا دنیا اور آخرت کی. انٹرٹیننگ لے رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ, ہمارا گیٹ ٹوگیدر ہے, فیملیز آئی ہوئی ہیں سب گھر میں, وہ جسے کہتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے, ادھن مچا ہوا ہے اور اس میں بھی ایک چاہت ہے, اس میں بھی ایک اپنائیت ہے, اس میں بھی ایک حسن ہے. تو یہ ساری خوبصورتیاں رانائیاں زندگی کی جو ہیں زندگی کو اور خوبصورت بنا دیتی ہیں. جی اب کیونکہ یہ بہت وسیع نظر جسے کہتے ہیں ٹاپک ہے جی, اس لیے میں ساتھ ساتھ آپ کے جو فیورٹ سانگز ہیں ان کا بھی سہارا لے رہی ہوں کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں, دنیا کے کسی ملک میں, یورپ میں بیٹھے ہیں, ایشیا میں ہیں, جہاں کہیں بھی ہیں, ہم نے یہ ذہن میں بات ضرور رکھنی ہے ہمارا مقصد حیات کیا ہے. دوسروں کو خوش کر دینا, وہ کہتے ہیں نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. فرشتے کم نہیں تھے عبادت کے لیے, اللہ پاک کے نہیں ہیں کم, بہت فرشتے ہیں اللہ پاک کے پاس. انسان کا یہی تو رکھ دیا کہ اس میں نفس بھی ہے, نفس. اچھا میں کل پروگرام سن رہی تھی یہ ریڈیو کا, اس پہ وہ بڑا خوبصورت, بہت ہی خوبصورت بات مجھے لگی, مجھے کالر کا نام بھول گیا. انہوں نے کہا کہ جی نفس مطمئنہ کی ہم نے کو لے کے جانا ہے دنیا سے. بہت ہی خوبصورت مجھے بات لگی ان کی کہ واقعی ہم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سا مجھے سرسری سا یہ سننے کو ملا سینٹینس میں بھی کہ میرا وہ الیوژن جسے کہتے ہیں وہ ہو, لیکن الیوژن ہو, لیکن میں نے خود بھی اس طرف نظر دوڑائی. ہم اکثر یہی دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں, اور بہت خوبصورت دعا ہے. پھر یہ دیکھیں کہ نفس مطمئنہ اور نفس امارہ, اور تین میرا خیال نفس ہے, ایک میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا. کہ پھر ہم نے جہاں کہیں بھی ہے نفس ہمارہ کی تباہ کاریاں جو ہے نا, ان کو مد نظر ضرور رکھنا ہے. یہ ہے علم اور یہ ہے نالج. چاہے ہم انٹرٹیننگ پروگرام کر رہے ہیں, چاہے ہم بہت کوئی ریلیجیس کہ بالکل ہی ریلیجیس پروگرام ہے, اس میں کوئی بھی ہم اس طرح کی چلیں یہ میوزک وغیرہ کا کوئی سہارا نہیں لے رہے. دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ انسانیت کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے. یہ بھی مجھے کل گفتگو سننے کو ملی, لیکن میں اس میں نہیں جاؤں گی. میں ہم اور آپ اس وقت یہ دیکھتے ہیں بیٹھ کے کہ کسی بھی دنیاوی چلے پہلے اسے ہم کہتے ہیں بھائی دنیا داری بھی کوئی چیز ہے, تو چلے دنیا داری کو دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارے لین دین میں. ہمارے لین دین میں تناسب ہے, ہماری بول چال ہماری گفتگو میں تناسب ہے. بہت مجھے دیکھیں میں اب واچ کرنے لگ, سننے لگ گئی, لسن کرنے لگ گئی ہوں یہ ریڈیو کے پروگرامز کے جس میں پھر وہ چل رہی تھی بات بہت ہی ایک کہ جی میں نے ایک اس سے بھی پہلے پروگرام کیا کہ ہم دوسروں کو جو تنقید کا آج کل جی لوگوں نے آ فلاتا, وہ کون ہے لوگ بھائی؟ وی آل آر دا پارٹ آف آور سوسائٹی, ہم سب پارٹ ہے سوسائٹی کا حصہ, ہم اپنے آپ کو نگلیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ اب بات آپ کی, جنہوں نے یہ پروگرام سنا ہے وہ یقیناً ان تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور چلے اوور آل بھی بات کرتے ہیں, بہت سے ایسے ہمیں جی صاحبان صاحبات سے بات کرنے کو ملتی ہے کہ دوسروں کو کریٹیسزم کرنا از اے ویری ایزی ٹاسک, لیکن اپنے کو بھی بات ہم کرتے, کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ تو پھر ہم نے ہم سب شامل ہو جاتے ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف. یہ مجھے اچھا لگتا ہے, یہ کیا ہم کرتے ہیں, کیا ہم سوچتے ہیں اپنی. وہی پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک انگلی دوسروں کی طرف کرو گی تو تین آپ کی طرف ہے. تو یہ جو ہے کیا ہمارا مقصد دوسروں کو, پھر یہاں پہ انسانیت ہیومینٹی کمز فرسٹ, ہیومینٹی آ جاتی ہے کسی بیس پہ بھی نہیں. رب العالمین رحمت للعالمین, اور یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اگر ہم اس کو مد نظر رکھ لیتے ہیں نا کسی بھی جگہ, کسی چلے آپ دنیاوی کی دنیا داری بھی کوئی چیز ہے کہ آپ دنیا داری ہی کے لحاظ سے لے لیتے, کبھی بھی قدم جو ہے ڈگمگائیں گے نہیں جب دوسروں کی فیلنگز کا ہم خیال رکھیں گے. بہت میں کہتی ہوں کہ مجھے میری جو وسعت نظری بھی جو ہے, میں یہاں پہ بھی کچھ بیٹھ کے نا جب اوور آل بات کرتے ہیں تو وہ پھر خود بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کس زاویے میں کس اینگل سے چل رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ سب کا؟ آپ سب بھی ہمیں جوائن کر کے گفتگو میں بتا سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ پہلو جو ہے ان کو کیسے اپلائی, کس طرح سے اپنے رولز ریگولیشنز جو ہے وہ, تاکہ میں آپ کو, میں نے ہمیشہ کہا ہے عائشہ اختر کا پروگرام جو ہوتا ہے انفارمیٹیو افیکٹیو informative and entertaining. Entertainment, ji, wo kehte hain ki ji, hum dekhe hard work, please, Asha ji, hamare liye koi khubsurat se song, ji, bilkul, maine kaha ji, hum pesh karte hain, aapke liye program hai, aur साथ साथ अगर हमें इंफॉर्मेशन बहुत खूबसूरत मिल रही है तो मैं कहती हूं इससे बेहतरीन लम्हात ही और कोई नहीं होते. अगर मैं भी किसी महफिल में जाती हूं, मैं भी लोग दूसरों को सुनती हूं और फिर मैं कहती हूं वाह, आज तो तबीयत हल्की फुल्की हो गई. क्या ख्याल है आप सबका, जरूर बताइएगा जी. हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े रहे और एक खूबसूरत सा ये भी एक किस्म का फरमाइशी नगमा है. और जी कहते हैं आपने तो मैडम जी को निकाल ही दिया है अपने प्रोग्राम में, मैडम जी क्यों नहीं आती. चले आइए हम मैडम जी को सुनते हैं. होपफुली आपको मैडम जी की ये आवाज और ये उनका नगमा जो है बड़ा पसंद आएगा. आइए सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह दोबारा हम अपनी गुफ्तगू की तरफ बढ़ेंगे. आइए जी खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं.

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा।
2: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: क्या बल्स जाने का इरादा है?
1: जी हाँ, बल्स जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बल्स सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
3: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
0: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, ऑन ब्रेडफोर्ड, 9627229622। लव
3: फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।

जी बिल्कुल मजा सावीन इकराम ब्राफरेशन रेडियो 1413 AM पर आयशा अख्तर के संग एक खूबसूरत सा प्रोग्राम में, इसलिए खूबसूरत कहूंगी कि टॉपिक आज का आप बहुत पसंद करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है जो कि मैं अभी डिस्क्लोज करती हूँ। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, जो हमारा और आपका साथ है 10 बजे से 1 बजे तक होगा, तो वैसे ये आपस की बात है कि जब हम कहते हैं ना 10 से 1 बजे तक, थोड़ा सा अरे घबराने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका सफर रखेंगे। जब जहाज जो है प्लेन एरोप्लेन चला जाता है 22 फीट 22,000 फीट की बुलंदी पे जब जाता है, तो एयर होस्टेस जो है वो अनाउंसमेंट करती है। मेरा ख्याल है इतना ही फिगर कमोबेश होगा, चले कुछ कमी बेशी होगी तो आप खुद उसको अकाउंटिंग को जो है ना सही काउंट कर लीजिएगा, अकाउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कमोबेश जब इतनी बुलंदी पे जहाज जाता, तो एयर होस्टेस जो है, जब खवातीनो हजरात इस वक्त हम 22,000 फीट की बुलंदी पर सफर कर रहे हैं, तो जो बड़े नाजुक दिल होते कहते हैं बयान करना को जरूरी सी वो बताना जरूरी था, चुप रहती हम जब करके बैठे हैं, डराती क्यों तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, बिल्कुल भी ये डराने वाली ही ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी बात नहीं है। आपका सफर इतना अच्छा रहेगा, इतना खूबसूरत कि आप खुद कहेंगे वाओ अमेजिंग एंटरटेनमेंट, होपफुली इंशाल्लाह। तो हमारी वेबसाइट जो है वो brafrationradio.co.uk है, उसे भरपूर इस्तेफादा हासिल करें। और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी हमारे, और जो आप व्हाट्सएप के ऊपर हमें जो है हमारे मोबाइल के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो है 07800599563। बहुत कुछ अब याद आ रहा है, धीरे धीरे डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि सॉन्ग जो है एक इस यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये रोमांटिक सॉन्ग 2026 का है, ब्यूटीफुल है जी, पंजाबी सॉन्ग है। तो मैं कि थोड़ा सा हट के, हमेशा ही तरह आयशा का मकसद होता है हट के धमाकेदार एक म्यूजिक पेश करूं कि आपकी जो तफरी है, आपके जो काम है, वो कह रहे भाई हम फैक्ट्री में मजदूर तबके के लिए आप जिक्र करें, भाई फैक्ट्रीज जितनी भी है जहां जहां मजदूर तबका, वो कहते हैं हम मेहनत कश है, भाई हम क्यों नहीं, भाई आपकी मेहनत को हम सलाम करते हैं अलकासिबू हबीबुल्ला। बिल्कुल जी, मेहनत करने वाला अल्लाह का भी दोस्त है। और ये जराह तज़किरा बहुत बहुत खूबसूरत सी बातें आप सबके लिए, हमारे सब सुनने वालों के लिए, हमारे सब लिसनर्स के लिए, और स्पेशली जो इतनी मुशक्कत कर रही है और हमें फीडबैक और कॉल्स आ रही है उसका भी जिक्र करते हैं। इससे पहले हमारा टॉपिक अब और क्या, मैंने सस्पेंस रखना बहुत खूबसूरत आप सबके लिए, मेरे लिए, सब सुनने वालों के लिए, वर्ल्ड वाइड जहां मेरी आवाज जा रही, इंसान की तखलीक का मकसद क्या है। अभी मुझे शेर का जी जवाब मिल चुका है जी, एक हमारे रेगुलर कॉलर जो मैनचेस्टर से चौधरी रुखसार अहमद साहब, उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन मैं फिर उसको अभी सीगाए राज में रखती हूँ, उसको डिस्क्लोज नहीं करना, और भी कॉल्स लेनी है। इतना ब्यूटीफुल सा शेर, आप कहेंगे लो जी हमें तो वो भूल भी गया, तो भूलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी चले वो किधर गया है, मेरे पास भी इधर था, तो अभी बातों बातों में जी आ गया है मेरे सामने ये शेर है। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे ना कयामत शबे तन्हाई की। बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में जिनको आता है उनके लिए तो बहुत इजी है, जिनको नहीं आता वो तलाश सर्च जरा करें, और हर एक जवाब जो है बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। बहुत खूबसूरत है टॉपिक हमारा, क्या मकसद है इंसान की तखलीक का, हमारा मकसद हयात क्या है, क्या है भाई हमारा मकसद, क्यों दुनिया में आए हैं,
ठीक है, इसके बारे में बातचीत भी रहेगी, आप भी हमें फीडबैक दें, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो, और इससे पहले कि फिर आप कहें बहुत सकील बातें हो गई, खूबसूरत सा सॉन्ग आपकी नजर करते हैं, न्यू पंजाबी रोमांटिक सॉन्ग 2026, आइए जरा स्मार्ट फरमाते हैं।

जी बिल्कुल मजे। सामईन इकराम, ब्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर आशा अख्तर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक सुबह नौ में लेके आई है। म्यूजिक भी आप लोगों का फेवरेट जो है चल रहा है, और इस वक्त मेरे पास जो फरमाइश भेजी गई है, वाओ अमेजिंग, आप खुद सुनेंगे, आप कहेंगे जरा हट के है ये। जी बिल्कुल, ए बड़ा बहुत जरा हट के ते बड़ा दिल छू लेने वाला। जी ताड़ी नजर हुने कर दे, बहुत ही खूबसूरत जिया चंगा जिया उन्हें ज्यादा पंजाबी दे लफ्ज जी बोले ते फिर और तुसी कहो कि टू मच हो गया। इसलिए फिर वापस बैक टू स्क्वायर हम अभी उर्दू पे फिर आ जाते हैं। जी बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपका इंतजार कर रहा है जी, और मैं चाहती हूं कि आप सब भी अपने जहन को हाजिर और नाजिर उतनी देर में कर लें और सोचें, हम सब सोचें हमारा जिंदगी में आने का मकसद। अगर इतनी बात जरूर कह देती हूँ इससे पहले, हमारी वेबसाइट brafreshradio.co.uk है जी, और हमारा स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी, और हमारी मोबाइल नंबर 07800599563 है जी। आप कहेंगे कि मैंने कहा कि आप कहेंगे कि हाँ जी, मैं आप पे ये वाजे कर दूं कि चूंकि ये एंटरटेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, अगर हम इसको मजहबी लिहाज से देखें, वैसे तो देखिए हम मजहब और डेली रूटीन लाइफ को दूर एक दूसरे से जुड़ा नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन फिर वो जो बहुत हमारा डीप और बहुत ही एक इमोशनल जो होता है और बहुत ही खूबसूरत सा होता है, एक हमारे बिल्कुल टोटली जिसे हम कहते हैं कि अगर हम दुनियादारी से भी उसको थोड़ा सा एक साइड पे रखें कि एक दुनिया क्या करें कि भाई हम क्या करें, लोगों ने बना दिया ये टर्म कि दुनियादारी है और दीन है, खैर तो वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो तो बहुत ज्यादा हमारे पास इस्लामी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, वो भी इंशाल्लाह साथ चलें करेंगे उसमें गुफ्तगू के दौरान, बल्कि वही चलें अब करते हैं और साथ साथ दुनियादारी के साथ चलते हुए क्या मकसद है हमारा। आपके पास बहुत नॉलेज होगा, मुझे बड़ी खुशी होती है इतने महज़ब मुअद्दब बाज़ौक और अहले इलम लोगों के दरमियान प्रोग्राम करते हुए कि दुनिया के खित्ते से कहां कहां से और पाकिस्तान से मुझे जो कॉल्स आती हैं और उनकी फीडबैक आती है, मैं आप सबको बहुत ज्यादा इसकी आप सबकी ममनून मशकूर और शुक्रिया आप सबका अदा करती हूँ। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बिकॉज आप खुद एक बहुत दानिशमंद है, आपके अंदर ये सारा नॉलेज है, वो अट्रैक्ट करता है आपको, और फिर वो हम गिव एंड टेक पॉलिसी भी कर लेते हैं। क्या ख्याल है आपका, क्या ऐसे चलें तो क्या बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा बेहतर होगा। मेरे पास एक फरमाइश बहुत ही खूबसूरत है, मैं चाहती हूं कि अगली नेक्स्ट ब्रेक पर जाने से पहले ये थोड़ा सा हम फरमाइशी सॉन्ग सुन लें। एक तो जिन्होंने फरमाइश किया ऑब्वियसली उनकी भी ये दिली तमन्ना होगी कि जी वो सॉन्ग आए और वो मेहनत करते हुए अपना जो मेहनत में दिल लगा के काम कर रहे हैं तो उनको अच्छा लगे, तो हम सबको अच्छा लगना चाहिए। आइए ये फरमाइश जो है पूरी करते हैं और एक खूबसूरत सा सॉन्ग आपकी नजर करते हैं।

हमारी किस्मत ही न थी। मोहब्बत ने हमें ये सबक सिखा दिया आखिर, जिसे दिल से चाहो वो तुम्हारी किस्मत ही नहीं। जी क्या ख्याल है आपका? आपको ये शायरी जो है परवीन शाकिर, बहुत ही एक हमारी खूबसूरत यंग टैलेंटेड पोइट, पोइट जिसे कहते हैं, पोइट ही कहते हैं ना शायर को? हाँ जी, शायरा के लिए भी पोइट ही होता है, तो शायरा है जी हमारी। बहुत ही खूबसूरत सी, और मुझे इनका धीमापन, मुझे इनका लहजा, लबो लहजा, और जब कभी बहुत कम ही रेयर इनको सुनना मिला, लेकिन ये है कि जब भी इनकी शायरी जो पढ़ते हैं तो मुझे बजाते खुद, पता नहीं आप सबका डिफरेंट इसके बारे में आ रहा होगी, एक हल्का फुल्का सा अंदाज लगता है, और बात वो जो गहराई भी रखती है लेकिन बात भी हो जाती है। तो बहुत, खैर पोइट्री के बारे में अपनी अपनी राय होती है। तो ये मेरे पास एक खूबसूरत सा सॉन्ग है, आइए सुनते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम का जो लास्ट मरहला होगा वो तय करेंगे जी। आइए एक खूबसूरत सा नगमा सुनते हैं।

0: DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीड रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15-16 अगस्त को एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहा रोड ब्रैडफोर्ड में जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15th एंड 16th ऑफ अगस्त 2026 लीड रोड फेस्टिवल
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर ऑफ दिस ईयर्स ब्रैडफोर्ड मेला
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की खुआरी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
7: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
7: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काकी की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 12 फुटलैंड ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
10: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
9: सोफी ज्वेलर्स
10: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
12: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों
3: Bradford Asian Radio, our voice, your choice.

0: कहती कहती बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मैंगो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
0: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैंगम सुपर स्टोर। मैंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैंगम सुपर स्टोर।
2: मैंगम सुपर स्टोर।

जी बिल्कुल सामईन इकराम, हमारे पास इस वक्त एक होल्ड किया हुआ बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, आइए ये सुनते हैं, फिर गुफ्तगू को हम अपने इख्तितामी मराहल में शामिल करेंगे।

जी बिल्कुल सामईन इकराम, प्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर इतना खूबसूरत आज का प्रोग्राम रहा। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि ये पल जो हैं ये सदियों पर मुहित हो जाएं, और स्पेशली जब हम मिल के सब एक अच्छी बातों को तश्कील देते हैं, अच्छे डगर पर चल रहे होते हैं और एक ऐसा सुहाना सा मंजर जो है क्रिएट हो जाता है कि हम उसको आंखों से ओझल नहीं होने देते। हम चाहते हैं कि ये लम्हे जो हैं हमारी जिंदगी पर मुहित हो जाएं और पल दो पल का सफ़र जो है वो सदियों पर मुहित हो जाए। क्या ऐसा है? ऐसा ही सोचते हैं वो इस सेंस में कि जो अच्छे खूबसूरत पल होते हैं ऑब्वियसली सबको बड़ी तस्कीन देते हैं, और यही कोशिश होती है कि जब भी प्रोग्राम आपके साथ मैं करूं तो ये पल और जितने लम्हात हैं वो खुशियों में खूबसूरतियों में डल जाएं, इंशाल्लाह दुआएं हैं और हमेशा दुआओं के हिसार में रहते हैं। मज़ीद गुफ्तगू से पहले हमारी वेबसाइट bradfordationradio.co.uk है और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर जो कि आज खूब इस्तेमाल हुआ, बहुत अच्छा लगा और अच्छी सेंस में 01274306677 और दूसरा नंबर जो है वो 07800599563 और बहुत ही उम्दा और म्यारी मुझे खुद को जो है गुफ्तगू आप सबकी सुनने को मिली, और स्पेशली पाकिस्तान से हमें जो कॉलर्स ने ज्वाइन किया, स्पेशली श्याम जी ने और फिर हमें चौधरी नुकसान अहमद साहब। तो अब मेरा ख्याल है कि ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो का एक टीम का हिस्सा जिसे कहते हैं ना वो बन गई हैं कि वो खुद अपनी जो उसमें फीडबैक के साथ साथ नॉलेज जो है वो फ्राहम कर देते हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया किस्म की होती है। और फिर देखिए ये तो हमारा मतलब चले कि हम यूके साइड की तरफ से देखते हैं, लेकिन बैन अलावामी सतह पर लाइक पाकिस्तान से हमें कॉल किया जाना और वहाँ पे उन्होंने हमें मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ जी आपको, अगर आप सुन रहे हैं श्याम जी के, आपने जाहिर है कि उन्होंने उनकी कॉस्ट लगी है उस कॉल के ऊपर, तो ये एक बहुत ही ज्यादा मैं समझती हूँ कि उनकी ग्रेटनेस है कि वो खुद भी इतने अच्छे प्रेजेंटर हैं और फिर वो शामिल होना और उनकी खूबसूरत गुफ्तगू रही, और ये फिर बाकी ओवरऑल जो है जहाँ कहीं से भी हमें हमारे मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम ने सुना सराहा ये हमारे लिए ऑनर की बात है, स्पेशली ब्रेडफोर्डेशन रेडियो के लिए कि हम जो आए दिन इसमें खूबसूरत जो है प्रोग्रेस हो रही है और आपको नज़र भी आ रही है वो प्रोग्रेस, करीब एक बहुत ही खूबसूरत गैदरिंग की शक्ल में वो मेरा क्लू आप समझ गए होंगे। इतना ही समटाइम्स मैं क्लू देती होती हूँ और कहती हूँ अकलमंद के लिए इशारा ही काफी होता है तो वो भी आपको इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे आमीन तो नजर आ जाएगा जी। जो कोई जो जैसी कारकर्दगी करता है सामने आ जाती है मंजरे आम पे, तो कोशिश हमेशा यही हम सबको करनी चाहिए कि हम अच्छे कामों में मुलव्वस रहें और अच्छी खिदमात अपनी जो है वो सोसाइटी में अंजाम देते रहें। हमारा वजूद जो है वो दूसरों के लिए आसानियां तकसीम करने वाला हो, हम आसानियां तकसीम करें और खुद भी अल्लाह ताला में आसानियां अता फरमाए और नफ्से मुतमईना, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नफ्से मुतमईना पर हम जो है उसकी जानिब अपने सफर को जब बढ़ाएं तो फिर हम सोचें कि उसके लिए क्या लवाजमात जो है वो दरकार है। जब लवाजमात जो दरकार शुदा है उनके ऊपर हम फोकस्ड हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमें नफ्से मुतमईना इंशाल्लाह बिल जरूर अल्लाह ताला ता करेगा, और ये बहुत जरूरी है दोनों जहान में कामयाबियां पाने के लिए। जी यही
कोशिश की है कि छोटी सी आपके आगे रखी और कोशिशें छोटी हो और लेकिन उनमें जो कोड मैंने की है वो बहुत ग्रेट और वही हमारी जिंदगी का मासल जो कुरान पाक से हमने ली वर्सेस वो हमारी जिंदगी का मासल है जी. और फिर हम इंसानियत का ह्यूमैनिटी का दर्स हमने कहाँ से सीखा, हमारी कुरान ने ही हमें सिखाया कि जिसने एक इंसान को बचाया गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचाया. और इंसानी जान कितनी कीमती है. और फिर हमने ये भी देखा और साथ साथ फीलिंग्स और हमारे मामलात, हमारे जज्बात, एहसासात, थिंकिंग और वर्ड्स ऑफ माउथ और क्या क्या है हमारी जिंदगियों से जुड़ा हुआ. आज इसके ऊपर सीर हासिल गुफ्तगू रही. आई होप के आप लोगों ने सबने पसंद किया. मैं अब अल्लाह हाफिज भी कहती हूँ, बात यहीं पे ख़त्म करती हूँ, अल्लाह हाफिज कहती हूँ क्योंकि ये हमारे पास एक फरमाशी सॉन्ग आया हुआ है जी के उसके बारे में जी ये खुद ही सुन लें आप. ये सॉन्ग प्यारा है, इसी पर इक्तफा करती हूँ, ख़त्म करती हूँ अपने प्रोग्राम को. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी. बहुत शुक्रिया, अपना डेरों डेर ख्याल रखिएगा. अशा अख्तर को इजाजत दे, अल्लाह हाफिज़.

0: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
2: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
1: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644।
3: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
2: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
2: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: जी मिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
2: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
2: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
4: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.

0: Oxford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड,
9: 01274201679। UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677. Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio, the real Asian radio. Bradford Asian Radio, our voice, your choice.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

ये ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की इस हसीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है www.bedfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वो अहबाब जो हमें इस वक्त आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी आज की इस महफिल गजल उसने छेड़ी की जीनत और तौकीर बढ़ाना चाहें, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

परदेसी मजी साहब मौजूद हैं खारियां गुजरात पाकिस्तान से, सात समंदर से पार से तशरीफ लाने वाले ये हमारे पहले खूबसूरत साथी हैं जो हमारा साथ 5 बजे तक निभाते हैं। तमाम ही वो अहबाब जिनके अस्माए ग्रामी मैंने लिए हैं, उन्होंने मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा आप सबकी नज़र किया है। परदेसी मजीद साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? सबको मेरा सलाम, ढेरों दुआएं और प्यार। हमने आपका सलाम, दुआएं और प्यार अपने तमाम सामईन और नाजरीन तक पहुंचा दिया है। कल प्रोग्राम के अख्तिताम पे हमसे एक गलती हुई थी जिसकी हमने तस्हीह कर दी थी और उसकी वजह समझ में आ गई। उसकी वजह यह थी कि हमारी ये डायरी है जो हमारे सामने होती, जिस पे हम अपने अहबाब के इस्माए ग्रामी और उनके पसंदीदा गीत तहरीर करते हैं, हमने एक सफ़ा छोड़ दिया था और जुमेरात पर बुध के प्रोग्राम लिखे थे। तो मैंने जैसे ही देखा कि थर्सडे है तो मैंने फौरन अनाउंस कर दिया, लेकिन बाद में ये रियलाइज किया और करवाया हमें हमारे मोहम्मद अयूब चौहान साहब और रिजवान रिजवी साहब और अम्बरीन जहरा जो कराची पाकिस्तान से तशरीफ लाते हैं कि आज तो बुध है। फिर हमने तस्दीक की, जिसके लिए हम आपसे माजरत खां हैं समा खराशी के। वक्त हुआ जा रहा है कमर्शल का, कमर्शल के बाद इंशाल्लाह वकार मियां आपका तोहफा लेकर हाजिर रहेंगे। वकार स्कॉटलैंड एडिनबरा से तशरीफ ला चुके हैं और आज वो वेल्स की तैयारी कर रहे हैं और इस वक्त अपने अहले खाना के हमराह मौजूद हैं और कहते हैं कि बस मैं अपने अहले खाना के हमराह अपना तोहफा वसूल करूंगा और फिर इंशाल्लाह मैं वेल्स के लिए निकल जाऊंगा। वक़ार मियां, ये आपकी मोहब्बत है, चाहत है और प्यार है कि इस कदर मसरूफियात के बावजूद आप हमारे प्रोग्राम की जीनत और तौकीर बढ़ाने के लिए तशरीफ लाते हैं। क्या कह सकते हैं, फ़कत इसकी दुआ दे सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आपके कारोबार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, खैर व बरकत अता फरमाए। आपका तोहफा कमर्शियल के वक्फे के बाद लेकर हाजिर रहेंगे। बढ़ते हैं कमर्शियल के वक्फे की जानिब। आप भी अगर हमें सुन रहे हैं आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में और आज की इस महफिल गज़ल उसने छेड़ी की इज्जत और तौकीर बढ़ाना चाहें, हम आपको दिल की तमाम तर गहराइयों से खुशामदीद कहेंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677। हम आपके कॉल के मुंतजर रहेंगे।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान,
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
6: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.
13: जी परदेसी मजीद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बखैर व आफियत हूँ और आपके तमाम पैगामात मुझ तक पहुँच रहे हैं। अब हम चल रहे हैं आपको लेकर वकार मियाँ के तोहफे की जानिब, वेकफील्ड। दुआओं से हम उन्हें नवाज ही चुके हैं, अब उनका तोहफा उनकी नजर कर रहे हैं इस दुआ के साथ कि हैव अ नाइस एंड सेफ जर्नी। दुआएं मियां हमेशा तुम्हारे साथ हमारी मौजूद हैं। अल्लाह तुम सबको अपने जमान में रखे, नजरे बद से बचाए और यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे।

दोस्तों, अभी अभी हमारी बज़्म में शामिल हुए हैं बर्नले से हमारे खूबसूरत लिसनर और कॉलर शकील साहब, और उन्होंने आप तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा भेजा है, और एक खूबसूरत गीत भी सुनना चाहते हैं जो हम इंशाल्लाह ज़रूर शामिल प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि अभी तो हम आपको लिए चल रहे हैं खाड़ियाँ गुजरात पाकिस्तान, जहाँ से हमारे मोहतरम परदेसी मजीद साहब तशरीफ ला चुके हैं, और सब पर सबकत लेते हैं वो, और पेज पर सबसे पहले तशरीफ लाकर हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं। इन खूबसूरत अशार के साथ जो हम आपकी नज़र कर रहे हैं कि अश्क आंखों से यूं निकल आए, जाने क्या कह गई बहार मुझे, क्या बताऊं सितारे सहरी है अभी किसका इंतजार मुझे। आपका तोहफा लेकर हाजिर हैं, कबूल कीजिए आमद का परदेसी मजीद साहब, बे इंतहा शुक्रिया।

0: और दोस्तों ये गीत था हमारे मोहतरम परदेसी मजीद की पसंद। फिल्म का नाम था नजराना, आवाजे मेहदी हसन नाहिद अख्तर की थी। गीत के बोल तहरीर किए थे कतील शिफाई ने और मौसीकी से संवारा था इसको एम अशरफ ने। चलते हैं कमर्शियल के वक्फे की जानिब। वक्फा हुआ जा रहा है, कमर्शियल के बाद हम आपका पसंदीदा सेगमेंट एक शायर एक गीत दो फनकार लेकर हाजिर रहेंगे।
1: मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk। This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
11: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
11: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
11: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
8: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
11: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
8: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
11: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
8: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
11: 07548419678।
8: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio, The Real Asian Radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

और दोस्तों आप सुन रहे हैं एक शायर एक गीत दो फनकार। आज के शायर हैं कतील शिफाई साहब, जिन्हें दुनियाए फिल्म में बे इंतहा मुमताज मर्तबा हासिल था और उन्हें बेशुमार उनकी अदबी काविशों के कोशिशों का एतराफ़ करते हुए बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 1994 में उन्हें मिला, जिसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी नज़र किया। इसके अलावा उसी साल आदम जी लिटरेरी अवार्ड भी उन्हें अता किया गया। अमीर खुसरो अवार्ड इंडिया में उन्हें दिया गया। इसके अलावा मकबूल तरीन अवार्ड पाकिस्तान का, फिल्मी दुनिया का, उन्हें चार निगार अवार्ड से नवाजा गया। और 1999 में उन्हें हुकूमत की जानिब से लाइफ अचीवमेंट कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान फिल्म्स अवार्ड से नवाजा गया। कतील शिफाई का लिखा हुआ ये गीत जो आज हमने एक शायर एक गीत और दो फनकार में शामिल किया है, अब तशरीफ ला रही हैं मलकाए तरन्नुम नूर जहां।

0: और दोस्तों अभी आप सुन रहे थे एक शायर एक गीत दो फनकार। आज की फिल्म थी सलामे मोहब्बत 1971 की। आज के शायर थे कतील शिफाई, मौसीकार थे ख्वाजा खुर्शीद अनवर और फनकार थे अहमद रुजी और मलकाए तरन्नुम नूरजहां। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और शकील साहब आपका तोहफा हम आपकी नजर करें, मेरे ख्याल अय्यूब चौहान साहब हैं, मैं एक मरतबा देख लूँ। अय्यूब चौहान साहब हमारे हमराह मौजूद हैं और आपके लिए कुछ तोहफा लाए हैं, तो शकील भाई इनसे गुफ्तगू के बाद आपका तोहफा आपकी नजर करेंगे। बढ़ते हैं और मिलते हैं हम अय्यूब चौहान साहब से। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम रिफत भाई, ठीक है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुनाइए, आप कैसे हैं?
1: मैं ठीक ठाक हूँ, बस गुजर रही है जिंदगी
0: ऐसे
1: की तरह से जैसे किसी के सहारे की
0: आरज़ू भी नहीं। वाह वाह, अल्लाह आपको हमेशा अपने इज़्ज़त-ए-मान में रखे और यूं ही हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजरे।
1: वो 3 बजे से 5 तक आपका प्रोग्राम सुनते हैं, रात को 9 बजे से 11:30 तक कुछ टीवी देखते हैं। अच्छा। बस उसके बाद सो जाते हैं, बस जिंदगी ऐसे गुजर रही है।
0: अल्लाह आपको हमेशा अपने इज़्ज़त-ए-मान में रखे।
1: तो साहिर लदियानवी साहब फरमाते हैं,
0: जी जी,
1: मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी।
0: वाह साहिर लुधियानवी की क्या बात है, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी,
1: मुझको रातों की स्याही
0: के सिवा कुछ न मिला।
1: मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली।
0: मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली।
1: वो मुसाफिर हूँ जिससे कोई भी मंजिल न मिली।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: जख्म मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली।
0: मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली।
1: वो मुसाफिर हूँ जिससे कोई भी

0: नहीं,
1: आए है रास्ते में कोई धुंधला सा सितारा भी नहीं।
0: मेरी नजरों ने नजारों की तमन्ना की थी,
1: मैंने चांदा और सितारों
0: सितारों की तमन्ना की थी,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: दिल में नाकाम उम्मीदों के बसेरे पाए,
1: आहा।
0: रोशनी लेने को निकला तो अंधेरे पाए,
1: अंधेरे पाए,
0: रंग और नूर के दारों की तमन्ना की थी,
1: मैंने चांदा और सितारों
0: की तमन्ना की।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या इंतखाब है साहब, वाह वाह वाह वाह।
0: अच्छा ये तो शायर लुधियानी साहब है, एक और है
1: जी,
0: ये फरमाते हैं, मुखराज इनका नाम है मेरा ख्याल है,
1: हाँ हाँ आता कीजिए।
0: तेरे बारे में जब सोचा नहीं था,
1: तेरे बारे में जब सोचा नहीं था,
0: मैं तनख्वाह था मगर इतना नहीं था,
1: वाह,
0: तेरी तस्वीर से करता था बातें,
1: तेरी तस्वीर से करता था बातें,
0: मेरे कमरे में आईना नहीं था,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: समुद्र ने मुझे प्यासा ही रखा,
1: समंदर ने मुझे प्यासा ही रखा,
0: मैं जब सहरा में था प्यासा नहीं था,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: मनाने रूठने की खेल में हम बिछड़ जाएंगे ये सोचा नहीं था,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: सुना है बंद कर ली उसने आंखें,
1: सुना है बंद कर ली उसने आंखें,
0: कई रातों से वो सोया ही नहीं था,
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो बस ये छोटी सी तू तो
1: बहुत बहुत खूबसूरत आपका इंतखाब था, अल्लाह आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता और सेहत से रखे।
0: मोहब्बत भरा सलाम शकील साहब को, राणा नवीद साहब को, क्या वो ढूंढ ढूंढ के शायरी आपके लिए लाते हैं, तो बहुत दिल गार्डन गार्डन हो जाता है।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है,
0: वो गाना भी अच्छा गाते हैं, ठीक है, खुदा हाफिज।
1: हाँ वो कल उन्होंने गुनगुनाया भी था और बड़ा अच्छी आवाज है उनकी,
0: उनको आज ग्राहक से कहना मैंने रिक्वेस्ट किया कोई गाना सुना।
1: आहा, जरूर कहेंगे, जरूर कहेंगे।
0: शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी कुछ कह रहे थे आप?
0: जी पहले मेरा गाना सुना देना तो फिर बात सोचेंगे और।
1: बिल्कुल सुनाएंगे आपका गाना।
0: शुक्रिया, मेहरबानी, खुदा हाफिज,
1: खुदा हाफिज।

दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। अभी अशआर की खूबसूरत और प्यारे से हसीन तोहफे के साथ हमारे हमराह मौजूद थे ओल्डहम से मोहम्मद अयूब चौहान साहब, और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत गीत भी सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है जो हम जरूर शामिल प्रोग्राम करेंगे। शकील भाई, आपका तोहफा भी तैयार है, लेकिन आपको पता है कि मैं कभी अधूरा गीत नहीं बजाता, और गीत आपका तवील है क्योंकि, तो हमने ये फैसला किया कि हम इसे कमर्शियल के वक्फे के बाद शामिल प्रोग्राम करेंगे। आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की हसीन वादी में। दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे ऑनलाइन सुना जा रहा है www.bedfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वो सामीन जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से अपने स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01274306677 पर खुशामदीद कहेंगे। अभी थोड़ी ही देर पहले तशरीफ लाए हैं लैया पंजाब पाकिस्तान से हमारे खूबसूरत लिसनर जनाब नज़ीर अहमद साहब, और कहते हैं हमेशा की तरह वही उनका पैगाम है कि मेरी जानिब से आप

0: Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
10: टैक्सी लाइसेंस,
9: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: UK।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: السلام علیکم. خالد سلیم میر صاحب پڑھیے. آپ پڑھیے, میں سننے والے سن رہے ہیں آپ کی آواز. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ پڑھیے, آپ کو لوگ سن رہے ہیں. جی آپ آن لائن ہیں, لوگ سن رہے ہیں, پڑھیے. پڑھیں پڑھیں.
1: تو آپ کو سب سامعین کو, شکیل صاحب کو, آریا امروہا کو, آپ سمیت سب کو سلام و آداب. تو میں آپ کو بڑی نایاب غزل ریاض مجید کی سنانا چاہتا ہوں.
0: سنائیے. بسم اللہ.
1: ریاض مجید کہتے ہیں, وقت خوش خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے. جی آ رہے ہو میں.
0: ارے یار, ہاں میرے بھائی آپ آن ایئر ہیں, آپ پڑھتے رہیے.
1: اچھا اچھا, میں شروع کرتا ہوں. تو ریاض مجید کی غزل ہے.
0: جی.
1: نایاب قسم کی, اور کہتے ہیں, وقت خوش خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے, رو بڑا وہ آپ مجھ کو حوصلہ دیتے ہوئے.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: اور اس سے کب دیکھی گئی میرے رخ کی مردنی, پھر لیتا تھا وہ مجھ کو دبا دیتے ہوئے.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: خواب سے تعبیر سی سوچے میرے کس کام کی, سوچتا اتنا تو وہ دستے عطا دیتے ہوئے. بے زبانی بخش دی خود احتسابی, خود احتسابی نے مجھے اونٹ سل جاتے ہیں دنیا کو گرا دیتے ہوئے.
0: واہ واہ.
1: اپنی راہ مسدود کر دے گا یہ بڑھ رہی بڑھتا ہجوم, یہ نہ سوچا ہر کسی کو راستہ دیتے ہوئے.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: اور ریاض مجید کہتے ہیں, آپ اپنے قتل میں شامل تھا میں مقتول شوق, یہ خدا مجھ پر طلب کا خون بہا دیتے ہوئے.
0: واہ واہ واہ.
1: ہمیں جب تک نظر آتا رہا تکتے رہے, گیلی آنکھوں اکھڑے لفظوں سے دعا دیتے ہوئے.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: وقت خوش خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے, رو پڑا ہوا آپ مجھ کو حوصلہ دیتے ہوئے.
0: واہ.
1: اور آپ کے سامعین کو دوبارہ سلام و آداب, شکیل صاحب کو بھی, علی امروہا کو بھی, اور آپ کو بھی سب کو سلام و آداب. اور رفیع صاحب کا کوئی گیت جو ہے نا لگا دیں, ایک گیت ہے ان کا میرے خیال میں دو گانا ہے, وہ مجھے یاد نہیں آ رہا, میرے خیال میں ساگر ساگر ہے, ساگر کا ہے. تو بہار وہ یاد نہیں آ رہا گیت کو, رفیع صاحب کا کوئی گیت میری طرف سے سامعین کے نام لگا دیں آج کے دن.
0: ضرور لگائیں گے, ضرور لگائیں گے. آپ کی آمد
1: میں سنتا ہوں.
0: آپ کی آمد کا بہت شکریہ.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. اور دوستو, ہمارے خالد سلیم میر صاحب بہت دنوں کی غیر حاضری کے بعد ہماری بزم کی رونق بڑھا رہے تھے. انہیں میں بتاؤں کہ سماعت کی کچھ شکایت ہے اور وہ سن نہیں پاتے. میرا خیال اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس وقت بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اسپیکر آن ہوتا ہے, اور جب اسپیکر آن ہوگا تو ہماری آواز کیسے پہنچے گی. بہرحال خوشی کی بات یہ ہے, قصہ مختصر, کہ آج انہوں نے ہمارے پروگرام میں شمولیت کی اور اس کی عزت و وقار میں اضافہ کیا. اور آپ کی خدمت میں خالد سلیم میر صاحب, پردیسی مجید صاحب نے محبت بھرا سلام بھیجا ہے اور کہتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے. وہ روزانہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. شکیل بھائی ہمارے جو ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں جو ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں. اب وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا. کمرشل کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے اولڈہم, جہاں محمد ایوب چوہان صاحب मौजूद हैं और अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं, और हमारे नज़ीर अहमद साहब, मैं आपको नहीं भूला हूँ, उसके बाद आपका तोहफा होगा। खुश आमदीद कह रहा हूँ, हमारी बहुत ही प्यारी सी ढेरों दुआओं के साथ तशरीफ लाई हैं बहना शहनाज ब्रैडफोर्ड एटी से, और उनकी पसंद भी उनके नाम करेंगे, लेकिन अभी तो हम बढ़ रहे हैं कमर्शियल के वक्फे की जानिब। मुलाकात होगी कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद। और मैं क्या कहना चाह रहा था, और मैं कुछ, हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मकबूलियत और शोहरत का उनकी आलम जुनेद जमशेद की, जिस ज़माने में वो गायकी से वाबस्ता थे, ये था कि हम बर्मिंघम में उनका एक शो कर रहे थे, तो इंतज़ामिया को बतौर ख़ास, क्योंकि हॉल बहुत बड़ा था, बहुत सी बच्चियां ऐसी थी जो स्टेज जो काफ़ी ऊंचा था बहुत, वहां जाके और ये गिटार बजाते हुए आते थे और सिर्फ हाथ लगाना चाहती थी। तो ये तय किया गया और जुनेद को बता भी दिया गया कि यार अब तुम्हें ऐसे मूव लेना है कि तुम एक तरफ से शुरू करो, राइट से शुरू करो और लेफ्ट तक पूरी जो बच्चियां तुम्हारी फैन हैं हाथ सिर्फ आपको लगाते हुए चले जाना है। और फिर उसने ऐसा ही किया, और फिर मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत जानने वाले थे, जाहिर है मैं वहाँ पर प्रोग्राम करता था बर्मिंघम में एक्सल रेडियो से, तो बिला मुबालगा मेरे पास कोई 100 के करीब वो थी कापियाँ, जो मैंने कहा था कि मैं आपको ऑटोग्राफ दिला दूंगा इनके, जुनेद जमशेद के। और उसके लिए फिर मैंने इससे रिक्वेस्ट की और इसने बैठ के वो कापियाँ सबकी साइन की थी, बजाय इसके कि मना कर देता कि यार दिमाग ख़राब है, इतनी बहुत सी कापियों पे ऑटोग्राफ बुक्स में कैसे साइन कर पाऊँगा। नो, ही डिड इट, उन्होंने निभाई बात और सारी कापियाँ, मैं खल बिला मुबालगा आधा घंटा लगा था, हक मगफिरत करे या जब आजाद मरता।
2: And online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
3: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
9: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। महमूद रिजवी, चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
2: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The Real Asian Radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.
0: और आइए दोस्तों, अब हम आपको गजल उसने छेड़ी में लिए चल रहे हैं ओल्डहम, जहां मौजूद हैं हमारे बहुत ही खूबसूरत लिसनर मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब, उनका तोहफा उनकी नजर करते हैं, और इसके बाद हम आपको लैया पंजाब पाकिस्तान लिए चलेंगे, जहां नजीर अहमद साहब का तोहफा उनकी नजर किया जाएगा। अब भी अगर वक्त है, प्रोग्राम अपने इख्तितामी घंटे में दाखिल हो चुका है, गो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं, हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677। चलते हैं ओल्डहम, अय्यूब जीते रहिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी आमद हमारा प्रोग्राम को चार चांद लगाती है।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। मैं हूं रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूं। मैं जिक्र करूंगा तफसील से अपने भाई डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी एडवोकेट साहब, जिस हमारे उन भाइयों में से हैं जिनकी बेलौस मोहब्बत, चाहत और प्यार का शुमार नहीं है। क्या किया उन्होंने ये कल के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे, लेकिन हाँ अभी तो हमें जाना है लैया पंजाब पाकिस्तान, जहाँ मौजूद हैं हमारे बड़े खूबसूरत लिसनर नज़ीर अहमद साहब। और उसके बाद आज बहुत दिनों के बाद तशरीफ़ लाए हैं हमारे खालिद सलीम मीर साहब हॉलैंड से। उनकी पसंद का मुझे अंदाज़ा है, उन्होंने कहा मोहम्मद रफ़ी का कोई भी गीत लगा दें, मुझे आपकी पसंद पता है। इंशाल्लाह जो गीत मैं आपकी जानिब से तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा वो आपको भी पसंद आएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो हम चल रहे हैं ये अपने लैया पंजाब पाकिस्तान में, जहाँ से नज़ीर अहमद साहब हमारे हमराह मौजूद हैं, उनका तोहफा उनकी नज़र कर रहे हैं। नज़ीर, आपकी ये मोहब्बत है, चाहत है और प्यार है कि सात समुंदर पार से इस कदर बाकायदगी से तशरीफ़ लाकर आप हमारी और हमारे प्रोग्राम की इज्जत व तौकीर बढ़ाते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आपके लिए मैंने अपनी पसंद का ये खूबसूरत गीत मुंतखब किया है, कबूल कीजिए।

0: मनीष, एक बार मुझे दिखा दो तो उस लड़के को।
1: सच मैं यही चाहता था तुझे जानने।

वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत सिलेक्शन थी डॉक्टर साहब आपकी। दिल खुश हो गया, बहुत दिनों के बाद ये गाना हमारे प्रोग्राम में शामिल हुआ। अब हम आपको लिए चल रहे हैं हमारी प्यारी सी बहना ब्रेडफोर्ड 18 में मौजूद हैं और आप हैं शहनाज, और एक रास की बात भी उन्होंने बताई है। आपको पता है हम पेट के हल्के हैं। उनका कहना यह है कि मैं भी जुनेद जमशेद शहीद के डाई हार्ट फैंस में शामिल थी, और हमारे यहाँ लड़कियाँ कॉलेज में उनके गीत गुनगुनाया करती थी। ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि आप उनकी फैन थी। लाखों लड़कियाँ उनकी आवाज़ और उनके इश्क में दीवानी हुआ करती थी। हमने वो उरूज का दौर देखा है। आपने एतराफ़ कर लिया, इसके लिए हम बेइंतहा शुक्रगुजार हैं आपके। और आपने एक खूबसूरत गीत उन्हीं की आवाज़ में, और इस गीत ने मकबूलियत और शोहरत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े मुंतखब किया है, पेश खिदमत है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी जोड़ी सलामत रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और बच्चों की बहारें दिखाए। उससे पहले मैं जिक्र कर दूँ, हमारे बहुत ही मोहतरम नवीद साहब तशरीफ लाए थे, लेकिन वक्त हुआ जा रहा था कमर्शल का और आज वो ज़्यादा मसरूफ़ हैं, तो वादा किया कि मंडे के प्रोग्राम में इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे। बहुत शुक्रिया नवीद। नवीद मियां जीते रहो।

दोस्तों, मैं बहुत माजरत खां हूँ। मुझे अभी कराची से फ़ोन किया था जनाब रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात अमरीन ज़हरा ने। उनका पैगाम मुझ तक पहुँच नहीं सका। कहते हैं कि हमने कुछ अशार भी भेजे हैं और एक गीत भी सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया उन्होंने। मैं माजरत खां हूँ, आपके अशार मुझे नहीं पहुँचे, ना ही व्हाट्सएप पे भी मैंने चेक किया है, उस पर भी नहीं है। तो किसी वजह से आपका पैगाम मुझे बर वक्त ना पहुंच सका, जिसके लिए मैं माजरत खां हूँ। इंशाल्लाह मंडे के प्रोग्राम में अगर आपने कोई कलाम भेजा है या तो आप मुझे, क्योंकि इस पे पेज पे नहीं है अभी तक, कतन नहीं है, मैंने पीछे तक चेक कर लिया है। और आपसे दरख्वास्त है कि मंडे के प्रोग्राम के लिए आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं उसे शामिल प्रोग्राम कर लूँगा और अपनी डायरी में नोट कर लूँगा। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम हम इख्तिताम की जानिब लेकर चलते हैं। बहुत ताखीर से तशरीफ़ लाए हैं हमारे मोहतरम AD चौधरी साहब, तो प्रोग्राम का आखिरी तोहफा हम उनके नाम कर रहे हैं और अपने तमाम सुनने वालों के बे इंतहा शुक्रगुजार हैं कि आपकी आमद ने हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए और इसकी इज्जत और तौकीर में इजाफा किया। उनका जो फ़र्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मोहब्बतों के पैगंबर रिफत अब्बास को इजाज़त दीजिए। रिजवान मियाँ, अमरीन ज़हरा, अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मंडे के प्रोग्राम में आपका जो भी कलाम होगा और जो पसंद होगी उसे शामिल करेंगे। शब्बख़ैर, फी अमानिल्लाह। जाते जाते M62 पर AD चौधरी साहब, आपकी नज़र है, कबूल कीजिए। शब्बख़ैर।

0: on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
8: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627222।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: आजान का वक्त हुआ चाहता है इस आजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أكبر. أشهد أن لا

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
7: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678
7: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio, the real Asian radio. Bradford Asian Radio, our voice, your choice.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 अथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अब लिए एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिज़वी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिज़वी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

0: DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड 3।
6: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट घर सजाइए नंबर लाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
6: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
9: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
6: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
9: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
10: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रैडफोर्ड एशियन Radio.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio, the real Asian radio. Bradford Asian Radio, our voice, your choice.

0: on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
2: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
3: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
2: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
3: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
2: फर्स्ट चॉइस
3: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
2: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
3: 01274317644।
4: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
5: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
3: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
5: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
3: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
5: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
3: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
3: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
5: बालियां, अंगूठियां और हार,
3: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
3: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
3: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
3: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान,
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
3: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
5: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
3: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
5: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
3: 33 वेटले लैंड, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
5: safewayrider.co.uk।
6: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
6: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The Real Asian Radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: to buy the UK Financial Conduct Authority.
1: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
2: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
1: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644।
3: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
2: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
4: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
2: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
4: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
2: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
2: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
2: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काके की दुकान,
2: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
2: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
5: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
6: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
6: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
7: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
7: मैनिंगम सुपर स्टोर,
8: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio, the real Asian radio. Bradford Asian Radio, our voice, your choice.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने

0: का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
1: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
0: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
1: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
0: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
1: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK। दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
0: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
0: बालियां, अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
0: आज ही मामू काके की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
0: आपकी शान
1: हमारी आन,
0: क्वालिटी की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95 ER, 01274491442।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
1: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
0: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
1: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
0: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
1: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
0: safewayrider.co.UK।
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
3: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
4: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229627222।
3: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio, the real Asian radio. Bradford Asian Radio, our voice, your choice.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
11: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट महमूद रिज़वी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 महमूद रिज़वी
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677
12: on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार।

0: जो दुल्हन करे सिंगार
1: आज ही मामू काके की दुकान
0: खालिस सोने की पहचान
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
1: आपकी शान
0: हमारी आन
1: क्वालिटी की पहचान
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड PD95ER 01274 491 442
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
2: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
3: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
0: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
3: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
4: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी-बड़ी छोड़ने की आदत है तो यह आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रैडफोर्ड एशियन
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.